हाँ जी, तुसीं हुणे जो रिपोर्ट सुन रहे हो, हंगरी दे विच ओरबन सामराज दा पतन उसनू उसे तरह जारी रखदे आ। इस चोण नतीजे विच नौजवानां दा योगदान सब तो महत्वपूर्ण रहा। 18 तो 29 साल दे उम्र दे वोटरां विचों सिर्फ 8% ने ओरबन दा समर्थन किया। नौजवानां विच इन्ना रोह सी कि कईआं ने अपने मापिआं दे वोटिंग कार्ड लगा दिते तां जो ओह फिडेस नूं वोट ना पा सकन। इही नौजवान हन जो लोड़ींदी गिणती तों घट अध्यापकां वाले स्कूलां विच पढ़े हन अते जिन्हां ने अपने मापिआं नूं गुजारा करन लई संघर्ष करदिआं देखिआ। जदों के सरकारी अधिकारी भ्रिष्टाचार राहीं अमीर हो रहे सन। पीटर मजार ने इस गुस्से नूं अपनी ताकत बनाया। मजार खुद कई साल फीडेस का हिस्सा रहा सी, पर 2024 दे विच एक बाल शोषण के मामले विच दित्ती गई सरकारी मुआफ़ी के घोटाले तो बाद उसने पार्टी छड़ दित्ती। हंगरी के वोटरां लई ए मजार नूं वोट पाउण का सवाल नहीं सी, सगों ओरबन नूं सत्ता तो लांभे करन दा सवाल सी, क्योंकि वह इस शासन तो छुटकारा चाहते सन। ओरबन की हार ने अमरीकी सज्जे पक्षी मैगा लहर नूं यूरोप विच अपने सब तो वड्डे विचारधारक राजदूत तो वांझा कर दिता है। कैनेडा अते आस्ट्रेलिया दीआं चोणां ने पहला ही साबित कर दिता सी कि चोण मुहिम नूं मैगा लहर नाल जोड़ना सियासी तौर ते आत्मघाती साबित हो सकता है, ते हंगरी विच यही वापरिया। ओरबन की अमरीकी प्रसिद्धि प्रति अन्नी श्रद्धा उसके किसी काम ना आई। इसके उल्ट माजार ने बड़ी चलाकी नाल ओरबन नूं एक अजिहे आगू वजों पेश किया जो हंगरी के आम वोटरां नालों वाशिंगटन के आगुआं दे वधेरे नेड़े हो चुका सी। माजार ने स्पष्ट किया कि ओरबन हर उस मुद्दे ते बोलिया जो हंगरी दे लोकां नाल संबंधित नहीं सी, ते नतीजे वजों लोकां ने उस नूं नकार दिता। मजार दे शब्दां विच साडा इतिहास ब्रसल्स जां वाशिंगटन विच नहीं सगों हंगरी दीआं गलियां ते चौंकां चौराहयां विच लिखिया जांदा है। भावें मजार अमरीका नाल मजबूत संबंधां दा हामी है, पर उसने ये शर्त भी रखी के ए सिर्फ हंगरी के सिर्फ हंगरी दे हितां दे लई होणगे। उस वलों प्रगटाई गई इस लोक केंद्रित पहुंच ने ही ओरबन दे उस सामराजी भरम नूं तोड़िया जो वह ट्रंप नाल दोस्ती राही पाल रहा सी। ये चोण नतीजा ट्रंप लई भी एक वड्डी बेइज्जती है जो ओरबन नूं अपना राह दसेरा मानदा सी। भावें मजार की जित नूं उदारवाद की जित वजों पेश किया जा रहा है, पर सच्चाई यह है कि मजार अते ओरबन दे बुनियादी प्रोग्रामां विच बहुता अंतर नहीं है। बाजार ने कई मौकियां खासकर आवास के मुद्दे ते फीडेस नूं सज्जे पास्यों पछाड़न की कोशिश की है। यूक्रेन के सवाल ते भी मजार का रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उसने सहायता ते वीटो हटाउण दा वादा तां कीता है, पर नाल ही यह भी कहा है कि इसलिए कोई हंगेरियन पैसा नहीं दिता जाएगा। रूस नाल आर्थिक संबंधां बारे भी उसका कहना है कि तुसी भूगोल नहीं बदल सकते। मजार अजिहे समय सत्ता विच आया है जदों विश्व आर्थिकता डूंघे संकट विच है। अमरीका अते इजराइल दी ईरान विरुद्ध जंग कारण तेल दीआं कीमतां असमान छू रही हैं। हंगरी अपनियां 80% ऊर्जा लोड़ां लई रूस ते निर्भर है, ते जेकर वह यूरोपीयन यूनियन दे दबाव हेठ रूस नाल संबंध तोड़दा है तां उसदी हालत होर भी पतली हो जाएगी। इस तों इलावा ब्रसल्स वल्लों बजट घाटा घटाउण लई खर्चियां विच कटौती दा दबाव, मजार लई सेहत अते सिख्या वर्गे खेतरां विच सुधार करना लगभग असंभव बना देवेगा। हंगरी
ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਬਨ ਦਾ ਪਤਨ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਔਰਬਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ